0: मिंगा चुवे तै तौ कासना नल्ली उसिन तिरिस पा समुख बने का नचा रिगुस पा लिका वांगी मंग
1: अरे अरे चैता से तनिंगा पा समुख हुआ ने हम पिन नहीं चैता का न्या पसे कचा मुसे जन छम पिशुन से मर चे ऑफिशियल लिखे रो एल चिम भी तब वाको चिल का कुन मकोस न्या चंग की कंसते
0: निका कई पिन रिस्तु मारे तै तमाइटो
1: या सिना काजा रिसुंगा स्ता कुनन सेस्ता